0: अमु कहमत तात्र अलगे हुए
1: रसे मी अली आये ने कोटे था माँ माँगे इंगा हालत ही नहीं था आतड़ दिवासे अम्मा हो यांडे मी वो करने ने कोटे ये जमा पास था माँ माँगी ये बाला अंडे किया ला इंगे कोटे मी इंगा हाला ही किया दिवासे मी मैं उन बैठला इंडिया ඒ හින්දා මේ එළියට බහින්නකොට බලාගෙන බලාගෙන දෙපැත්ත බලාගෙන යන්නේ